0: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।
1: सघन सावन

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है, अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

10:08 है शुरू की घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिशा हाजिर हो चुकी है, आप सभी तक पहुंच रही हूं। जी हां, सभी के दिलों के पास आने की छोटी सी कोशिश लेकर आई हूं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर 107 FM रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं और शर्मिशा लेकर हाजिर हो चुकी है रोज का कार्यक्रम, जिसे आप इस वक्त इस चैनल के जरिए सुनते हैं, जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला तो चलता ही रहता है इसी कार्यक्रम में, इसके अलावा बहुत सी बातें होती रहती हैं इसी कार्यक्रम में। और इसीलिए तो जी हाँ, इसीलिए तो नाम पड़ा है इस कार्यक्रम का नॉनस्टॉप गपशप, यानी कि बिना स्टॉप किए गपशप को किए जाना और बीच बीच में ये संगीत का सिलसिला भी चलता रहता है इसी कार्यक्रम में। तो चलिए एक बढ़िया से गाने के साथ शुरुआत हो

सभी तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी सुबह के 7 बजे से लेकर, और चलता रहेगा ये सिलसिला पूरे 12:20 तक। और भी बहुत से कार्यक्रम हैं जिनको लेकर करूंगी बात आज के इस सुबह। जी हाँ, और दोपहर के बाद और भी बहुत से कार्यक्रम होंगे आप सभी के मनोरंजन के लिए, लेकिन फिलहाल बात करें आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप, और गपशप का सिलसिला भी चलता रहेगा इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत सुनवाऊँ आपको जिसमें आवाज़ है श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।
2: दस बज के 17 मिनट है, स्टूडियो की घड़ी का समय और संग है आप शर्मिष्ठा के। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 2026 में अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का आइकॉनिक किरदार निभाया था और खूब लाइमलाइट उन्होंने बटोरी थी। लेकिन वो तो पिछले साल की बात है ना। और इस साल की अगर मैं बात करूँ, यानी कि 2026 में धुरंधर आखिर किसे कहा जा रहा है, किसे नाम दिया जा रहा है धुरंधर का, तो आप क्या कहेंगे? चलिए बताऊंगी इसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल एक फिल्मी गीत की ओर रुख करते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आखिर 2026 में धुरंधर नाम किसे दिया जा रहा है। फिलहाल आशा भोंसले सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

कितनी सुंदर बात है ना कि मरने से पहले जीना सीख ले। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि पहले ही हम हार मान लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे कठिन परिस्थिति थी, शायद हम कभी जीत ही नहीं सकते और ये जो परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हुई है इससे लड़ना झगड़ना बहुत ही मुश्किल है और चाहे कुछ भी हो जाए इस परिस्थिति को हम हार नहीं मनवा सकते और न ही खुद खड़े हो सकते हैं और इस सिचुएशन से हम निकल नहीं सकते। बस यही चिंता करते करते हम अपने आप को जैसे बस ख़त्म ही कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो गीत संगीत होते हैं ना, ये कई बार हमें इतना ज़्यादा बूस्ट अप कर देते हैं कि वाकई में ऐसा लगता है कि ये जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हुई है इनसे हम लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं और फिर एक बार अपने आप को हम खड़ा करके एक सहज जीवन जीने के लिए फिर एक बार तैयार हो जाते हैं। तो फिलहाल बात हो रही है नॉनस्टॉप गपशप में और मैं बात कर रही थी धुरंधर फिल्म को लेकर, है ना। और 2025 में अक्षय खन्ना को लेकर बात हो रही थी कि धुरंधर फिल्म के ज़रिए कितने ज़्यादा फेमस हुए थे, कितना ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया था। लेकिन 2026 में आखिर धुरंधर किन्हें कहा जा रहा है और आखिर क्यों कहा जा रहा है, तो बताऊं आपको कि नसीरुद्दीन शाह को इस साल धुरंधर का नाम दिया जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि उनके बेहतरीन फिल्मों को लोग आज भी पसंद करते आ रहे हैं, उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना कि उस समय दिया करते थे जिस समय उनकी फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। और हो भी क्यों ना, हर एक फिल्म में उनकी एक नई अदाकारी को हमने देखा है, नए नए रोल में नसीरुद्दीन शाह को हम देख पाए हैं और आज भी उन्हीं किरदारों को लोग उतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो कल यानी कि 20 जुलाई को नसीरुद्दीन शाह ने अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाया था और जन्मदिन के अवसर पर हमने उनकी फिल्मों को लेकर भी बातें की थी। तो नसीरुद्दीन शाह 1970 के दशक के मध्य में श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने समानांतर सिनेमा यानी कि पैरेलल फिल्म्स में आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला और अर्धसत्य जैसे बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया था। शाह ने हम 5 जो कि रिलीज़ हुई थी 1980 में, उस फिल्म से मुख्यधारा के बॉलीवुड में कदम उन्होंने रखा था और उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में मासूम जो कि रिलीज़ हुई थी साल 1983 में, उसके बाद उसी साल 1983 में एक और फिल्म आई थी जाने भी दो यारों और उसके बाद साल 2008 में अ वेडनेसडे फिल्म के ज़रिए उनके बेहतरीन अभिनय को हम सब ने देखा था। और पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक नहीं बल्कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किया था। इसके अलावा 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्मभूषण से उन्हें नवाजा गया था। तो बेहतरीन अभिनेता की बेहतरीन फिल्मों को लोग पसंद करेंगे, यही तो काफ़ी स्वाभाविक सी बात है ना। और आज भी हम उनकी फिल्मों को लेकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं और साथ ही साथ फिल्मों के गीत, जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह से जुड़े फिल्मों के गीत आज भी हम उतने ही ज़्यादा पसंद करते हैं जितना कि रिलीज़ होने के दौरान उन्हें पसंद किया जाता था, प्यार दिया जाता था। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना, उसके बाद बातें तो होती रहेंगी, और भी बहुत से विषय हैं जिन्हें लेकर आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगी और एक और शख्स हैं जिन के गीतों के माध्यम से उन्हें हम याद करते हैं और अनगिनत गीतों को देने वाले गीतकार को लेकर बात करूँगी इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आतिफ असलम और साथियों की आवाज़ में।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 45 मिनट है स्टूडियो घड़ी का समय और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा। और चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नॉनस्टॉप गपशप का और इस वक्त बात कर लेते हैं एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे गीतकार के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल में बॉलीवुड को अनगिनत खूबसूरत गीतों का तोहफा दिया है और आज भी उनके लिखे गीतों को हम इतना ही प्यार देते हैं, उतना ही प्यार से गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, गाते हैं जितना कि फिल्मों के रिलीज़ के टाइम पर सुपरहिट हुआ करते थे वो सारे गाने। बात कर रही हूँ गीतकार आनंद बख्शी के बारे में। आज उनकी जयंती, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके गीतों को लेकर होंगी बहुत सी बातें कार्यक्रम लोग आगे उनकी याद में। आज आनंद बख्शी को लेकर, उनके गीतों को लेकर बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन फ़िलहाल नॉनस्टॉप गपशप में एक ऐसे कलाकार को लेकर बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन काल में 6000 से ज़्यादा सदाबहार गीत लिखे। जी हाँ, 300 से अधिक फिल्मों के लिए उन्होंने इतने सारे गीत लिखे और इतने सारे गीतों में ऐसा शायद कोई एक गीत होगा जिसे लोगों ने कम पसंद किया होगा। जी हाँ, कम पसंद किया होगा यही कहा जा सकता है, क्योंकि उनके गीतों में ना एक खासियत थी और वो खासियत ये थी कि उनके बोल की सादगी। जी हाँ, इतने सिंपल और सीधे शब्दों में वे गीत लिखते थे कि जो भी उन गीतों को सुनता, गुनगुनाता, सीधे वो गीत उस सुनने वाले के दिल पर जाकर छप जाया करता था। और इसीलिए तो सीधे साधे गीत लिखने वाले आनंद बख्शी को लोग उतना ज़्यादा प्यार उन्होंने दिया और आज भी ये जो प्यार है ये बरकरार है उसी गीतकार के लिए जिन्होंने अपने लंबे सफ़र में अनगिनत गीतों को गीत पसंद करने वाले लोगों तक पहुंचाया। तो चलिए, बात जब हो रही है आनंद बख्शी की तो वैसे तो बहुत से गीत हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किस किस गीत को सुने और सुनवाएं और किन किन गीतों के बारे में कितना कितना बात करें, है ना। तो चलिए फिलहाल लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, और उसके बाद एक ख़ास चीज़ को लेकर भी बात करूंगी, एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं बॉलीवुड की दुनिया में। तो फिलहाल ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलने से पहले चलिए एक खास चीज को लेकर बात कर लेते हैं। अच्छा, शतरंज का जो खेल होता है उससे तो आप सभी वाकिफ होंगे और हम में से कई लोगों ने इस खेल को खेला भी होगा और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, शतरंज के खेल में काफ़ी महारत भी उन्हें हासिल होगी। लेकिन बात यह है ना कि क्या इस दिन को लेकर भी कोई एक

खास दिन मनाया जा सकता है। तो हाँ जी हाँ, शतरंज के नाम भी एक दिन डेडिकेटेड है और वो दिन था कल का, यानी कि 20 जुलाई, जब मनाया जाता है वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस के तौर पर कल यानी कि 20 जुलाई को मनाया जाता है। और ये दिन 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। इसे 1966 से मनाया जा रहा है और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता भी दी थी। और मजे की बात यह है ना कि जिस खेल को लोग खेलते हैं और बुद्धि का खेल माना जाता है, और जिसमें जितनी बुद्धि उतनी ही अच्छे तरीके से इस खेल को खेला जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि इस खेल को लोगों तक पहुंचाना और खेल को किस तरीके से खेला जाता है इसके बारे में जागरूक लोगों को करना। और जैसे कि मैं अच्छी बात बता रही थी, तो खेल तो अपने आप में एक अनोखा खेल है ही, लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड की दुनिया में इस खेल को लेकर भी बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, यानी कि मैं टाइटल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, शतरंज एक ऐसा नाम है जिस नाम से बॉलीवुड की दुनिया में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, और इस नाम से अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर्स को हमने देखा है, अलग अलग अभिनेता अभिनेत्रियों को बेहतरीन अभिनय करते हुए हमने देखा है। तो चलिए, ये तो थी आज की कड़ी। नॉनस्टॉप गपशप में बातें हो रही थी बहुत सी, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को करना होगा समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी जो बता रही है कि गपशप का समय आज के लिए बस इतना है। उसके बाद बात होगी 100.1 FM गोल्ड पर, लेकर आऊँगी आपके लिए कार्यक्रम लो आ गई। उनकी आज समय रहेगा 11:10। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ। और फिलहाल के लिए एक आखिरी गीत, जो कि कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत है, इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। फिलहाल सुखविंदर और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गांदोरिया 107 FM रेनबो ते। गांदोरिया गांदोरिया छुए जाक मन, छुए जाक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: एक 107 FM रेनबो दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने टीम का तड़का में। 3:04 और मैं रहूंगी आपके साथ 4 बजे तक। बता दूं कि 3:30 पर आप सुनेंगे आधे घंटे का एक प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। और अभी वक्त है प्रयोजना प्रस्तुति की।
3: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
2: परियोजना प्रस्तुति, आज मैं आप सभी के सामने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। साथियों, किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर बने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जब आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तब देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ग्रीन फील्ड परियोजना का अर्थ है ऐसा नया उद्यम जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं या व्यापार से जुड़ा हो। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी और एक SC या ST उद्यमी को ऋण देना अनिवार्य किया गया है। इस ऋण में परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं लगानी होती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। ऋण की अदायगी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक होती है और इसमें कार्यशील पूंजी की भी सुविधा मिलती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की एक खास बात यह है कि इसमें केवल ऋण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की है ताकि उद्यमी सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना से लाखों महिलाएं और युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, स्टैंड अप इंडिया योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर आप या आपके आसपास कोई महिला SC या ST वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में अवश्य जानकारी दे।
3: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

सुई धागा का ये टाइटल ट्रैक आपने सुना दिव्या कुमार की आवाज में। इसे लिखा वरुण ग्रोवर ने और संगीत बद किया अनु मलिक ने। और चलिए तीन का तड़का में आगे बढ़ते एक और गीत के साथ, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने। इस गीत को मैंने चुना है फिल्म धुरंधर से, और इससे लिखा इरशाद कामिल ने, संगीत बद किया है शाश्वत सचदेव ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तीन बजकर 22 मिनट और 31 सेकंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब आगे बढ़ेंगे पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाज के साथ। इस गीत को मैंने चुना है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा, संजय लीला भंसाली ने इसे संगीतबद्ध किया।

और अब वक्त हो गया है तीन का तड़का के आखिरी गीत का। आखिरी गीत इसलिए क्योंकि 3:30 बजे 3:30 से आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिलहाल अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की आवाज़ में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से ये गीत अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ के अल्फाज के साथ और प्रीतम के संगीत के साथ। और इसी के साथ वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो

जाएगा और आपकी आरजे फ्रेंड पलक के पलक झपकाने का समय हो जाएगा। तो मुझे अभी दे दीजिए इजाज़त, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा, साथ रहिएगा। इस गीत के बाद हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। गुड बाय और टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ अदर्स अराउंड यू।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
0: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
0: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
0: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
1: जी,
0: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
0: जी।
1: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
0: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला
0: जी।
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
0: जी।
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
0: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
1: जी। पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
1: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
1: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
0: जी।
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
1: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
0: जी।
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
0: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व

0: परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहां नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ई मेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है, टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना।
4: हाँ,
0: टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
5: आपके परिवार

0: आपको देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
1: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
0: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
0: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
0: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
0: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
0: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा शंखकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
0: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
0: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
0: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
0: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
1: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
3: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गयी थी, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
5: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया, और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
5: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
0: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
6: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
0: हाँ।

0: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
1: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
2: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan, sung by Neha and Children, recorded by Butty Langlingdo, produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग उमंग उमंग उमंग.
5: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT. और अब न्यूज़ है.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन।
2: सुनछो कैफे कोलकाता 107 FM रेनबो थे कैफे कोलकाता।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक सौ सात FM रेनबो दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी RJ पलक आपके अपने छायालोक में। 7:04 और 7 सेकंड और मैं रहूंगी

0: आपके साथ 8 बजे तक, और 8 बजे से 9 बजे तक आपके साथ रहेगा कोई और, और वो कोई और है प्रीति परार का। आज के इस सफर में आज का सेगमेंट है प्यार भरे नगमे, और प्यार भरे नगमे में प्यार भरे नगमों का होगा कारवा। और बता दूं कि सबसे पहले हम सुनेंगे सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म बॉर्डर का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।
1: प्यार भरे नगमे

0: बॉर्डर फिल्म के इस गीत के बाद जिसे गाया सोनू निगम, अलका याग्निक ने लिखा, जावेद अख्तर ने संगीतबद्ध किया, अनु मलिक ने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे लकी अली की आवाज में ये अगला गीत जिसे मैंने चुना है फिल्म कहो ना प्यार है से। और दोस्तों, कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि हमें कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है।
1: राज,
2: hey, नीता, तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है?
1: कौन? ओ सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं?
2: तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से। मैं खुद समझ नहीं पा रहा, उसकी एक नजर ही काम कर गई। मैं बता नहीं सकता नीता, वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे। क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर, सो सिंपल, सो इनोसेंट, और फिर उसका इस तरह चले जाना। I mean, it just left so many questions unanswered, you know.
1: Too much.

0: सच। वाओ राज, दैट इज सो रोमांटिक। अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती।
1: नीता, यू गॉट टू हेल्प मी। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही है।

बीत सह चुकी हूँ। तुम पर क्या बीती होगी इसका तो शहर में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सनिया, तुम भूल रही हो कि जिंदगी अब भी तुम

मेरी बस खामियों से रूबरू करवाया था इस जमाने ने मुझे। मैं कितनी अच्छी हूँ ये सिर्फ तुमने मुझे बताया। तो तुझ में रब क्यों ना दिखे। रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ये अगला गीत रब ने बना दी जोड़ी से।

किसी ने खूब कहा है कि जरा सी साजिश पे, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी का दामन, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है दोस्तों अपनों को अपना बनाने में। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, और इसलिए यदि आपके पास भी कोई वैसा हमसफर हो, कोई ऐसा हमसफर हो जिसके साथ आप होते हैं, आपको खुद को बदलना नहीं पड़ता, तो बस उसे थाम ले और उसे कभी कहीं जाने ना दे।

आवासी मोनाली ठाकुर की, गीतकार वरुण ग्रोवर, संगीतकार अनु मलिक और फिल्म दम लगा के हईशा।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: प्यार भरे नगमे,
3: सात बजकर 33 मिनट और 33 सेकंड, आप सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। छायालोक रहेगा आपके साथ पूरे 9 बजे तक, मैं रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक लेकर कार्यक्रम आज का हमारा प्यार भरे नगमे। हर मंगलवार लेकर आती हूँ, लेकर आते हैं हम आपके लिए प्यार भरे नगमे, और इन्हीं प्यार भरे नगमों में से आपको एक और नगमा आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। और ये अगला गाना हरिहरन और बेला शिंदे की आवाज़ में पहली फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा, MM करीम ने इसे संगीतबद्ध किया, और तेरे बिना ये दिल अधूरा लगता है, सच्चा प्यार बस तुझ में ही पूरा लगता है।

7:40 और आप सुन रहे हैं छाया लोक में प्यार भरे नगमे अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। दोस्तों, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो ही प्यार जीने की वजह बन जाता है। जी हाँ, और ये अगला गीत लकी अली सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म सुर से, और इसे लिखा है निदा फाजली ने और संगीत बद्ध किया है MM करीम ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 7:49:07 आप सुन रहे हैं छायालोक में प्यार भरे नगमे अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब पैपॉन और रॉनकिनी गुप्ता की आवाज में सुई धागा का ये गीत वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा है और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया।

7:55 और अब इस घंटे का आखिरी गीत कुमार सानू की आवाज में फिल्म परदेश से। जी हां, आप समझ चुके होंगे ये गीत है द अल्टीमेट रोमांटिक सॉन्ग रिटन बाय आनंद बख्शी एंड कंपोज्ड बाय नदीम श्रवण। दो दिल मिल रहे हैं। और जी हां, ऐसे के साथ मुझे अपनी आरजे पलक को दीजिए इजाजत। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। और इंतज़ार कीजिए इस न्यूज़ ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट का छायालोक में। बने रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: रेनबो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति। जी हाँ, वक्त हो चला है 8:03 और 53 सेकेंड। आज का ये एक घंटा किसी गंभीर चर्चा का नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों का है जिन्हें हम अक्सर जल्दी में पीछे छोड़ आते हैं। जिंदगी कोई मंजिल नहीं, या तो रोज मिलने वाला एक नया अवसर है, कभी खिलखिलाने का, कभी सीखने का, और कभी किसी का हाथ थाम लेने का। तो आइए मुस्कुराहटों की इस महफिल की शुरुआत करते हैं और आप सभी से एक गुजारिश करते हैं कि हमसे जुड़ने के लिए बस हमारा नंबर डायल करिए 2213-1341। इस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मनपसंद गीत को सुन सकते हैं। जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नगमा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो अपनी दोस्त प्रीति के साथ। वक्त तो चले हैं 8:10 और 18 सेकेंड। हमारा नंबर है 2213-1341। इस नंबर पर आप डायल करके हमसे

जुड़ सकते हैं। जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, चलिए एक शायरी हो जाए। धूप हो या छाँव, सफ़र चलते रहना चाहिए, चेहरे पर यूं ही असर हंसी का पलते रहना चाहिए। जिंदगी हर रोज़ नया रंग भरती है, बस दिल का कैनवास खुला रहता रहना चाहिए। हम सब अपने घरों की सफाई करते हैं, कभी अलमारी, कभी रसोई, तो कभी कमरा, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन की सफाई की है? मन में जमा पुरानी शिकायतें, पुरानी नाराज़गियाँ, पुराने डर, ये भी तो धूल की तरह ही होते हैं ना। जितना इन्हें हटाएंगे उतनी ही नई खुशियों के लिए जगह बनेगी। किसी को माफ़ करना सामने वाले पर एहसान नहीं, बल्कि अपने दिल को हल्का करने का सबसे सुंदर तरीका है ना।

चलिए देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, चलिए उनसे बात तो नहीं हो पाई, पर थी हमारे साथ सुप्रिया और वो सुनना चाहिए हैं हीरो फिल्म से तू मेरा हीरो है। तो चलिए उनके हीरो के लिए ये गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

107 FM रेनबो पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त प्रीति, लेकर आई हूँ कार्यक्रम छह लोग। और छह लोग में अभी जो फरमाइश आई थी, फरमाइश किनकी थी और कौन से गीत की थी, ये बताने के पहले मैं एक शायरी बोल दूँ। बहुत मन कर रहा है आपसे शायरी शेयर करने का। शायरी बहुत ही सिंपल सी है, बस समझना आना चाहिए। रंजिशों का बोझ कम कर दीजिए, दिल में थोड़ा सा उजाला भर दीजिए, जो गुजर गया उसे जाने दीजिए, नई सुबह को मुस्कुरा कर जी लीजिए। मुझे पता है अभी शाम है, पर मैं हर रोज़ की बात कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ, अशोक कर ने फ़ोन किया था और उन्होंने सुनना चाहे क्रांति फिल्म से मेरी पसंद का कोई भी गीत। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: वक्त तो चला है 8:34:17, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क, जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय को शिकायतों में खर्च करता है तो कोई सपनों में निवेश करता है। रोज 10 मिनट, जी हाँ, रोज 10 मिनट अपने लिए रखिए। किताब पढ़िए, पेड़ को देखिए या फिर बस आसमान को निहारिए। यकीन मानिए, मन फिर से पूरे ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ, अब हमारे साथ जुड़े हैं मोहनुद्दीन लश्कर और उन्होंने सुनना चाहे गुलामी फिल्म से इस गीत को। तो चलिए उनकी फरमाइश पर सुनते हैं इस गीत को।

वक्त चला है 8:42:27। चलिए बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा हंस भी ले। चलिए, एक शिक्षक ने पूछा बच्चों से कि अच्छा बताओ तो सबसे तेज क्या दौड़ता है। तो एक बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, सर महीने की सैलरी। पूरी कक्षा हंस पड़ी। जी हाँ, हंसी भी बिल्कुल पूरी दवा है, बस फर्क इतने हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दिन में कम से कम एक बार तो दिल खोलकर हंसी लेना चाहिए, क्योंकि हंसी की कोई कीमत नहीं होती और ये सबसे कीमती तोहफा है। जिस घर में ठाके घुसते हैं ना, वहीं असली सुख का पता है। तो अब हमारे साथ जुड़े थे विश्वजीत हुगली से, और उन्होंने सुनना चाहा है मन फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो उनकी फरमाइश पर आइए हम आपको सुनाते हैं यह गीत।

वक्त तो चला है 8:48 और चलिए एक सपनों की बात कर लें। हर बड़ी इमारत पहले एक नक्शा होती है, हर किताब पहले एक खाली पन्ना होती है और हर सफलता पहले एक छोटा सा सपना होता है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझिए, बीज छोटा होता है लेकिन वही आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है। उड़ना है तो पंखों पर भरोसा कम मत रखो, अपने हौसलों पर यकीन ज्यादा रखो। आसमान खुद रास्ता दे देगा, बस कदम बढ़ाने का साहस रखो।

वक्त तो चला है 8:53 और 32 सेकेंड। चलिए हम जाते जाते आपको बता दें कि अगर आपकी वजह से आज किसी ने मुस्कुराया, अगर आपकी वजह से किसी को उम्मीद मिली और अगर आपकी वजह से किसी का दिन थोड़ा सा आसान हो गया, तो समझ लीजिए आज का दिन आपका सफल रहा। क्योंकि ज़िंदगी लंबी हो या छोटी, यह हमारे व्यवहार से याद की जाती है। चलिए चलते चलते एक आखिरी शायरी आपके नाम, नाम से नहीं काम से पहचान बनाइए, भीड़ में नहीं दिलों में जगह बनाइए, मंजिलें खुद ब खुद करीब आ जाएगी, बस इंसानियत का रिश्ता निभा लीजिए। चलिए जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके सामने पेश किए जा रही हूँ मोहम्मद अजीज और सादा सरगम की आवाज़ में। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है। मेरा पसंद का गीत आपको मैं सुनाते हुए चलती हूँ। टाटा बाय बाय।

पतंजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।